0: रेडियो सुनो 91.7 एफएम कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
1: हाय दिस इज मंजिमा यू आर लिसनिंग टू 91.7 कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो सुनो